ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। जापानी वजीर खारजा मोतेगी तोशिमित्सु ने इस जरूरत पर जोर दिया है कि पूरी आलमी बरादरी अपना हुरमुज के मुस्तकबिल पर बात करे। उन्होंने न्यूयॉर्क में वज़राए खारजा के एक इजलास में महफूज और मुस्तहकम बहरी दायरा कार के हुसूल के लिए बहरी तआवुन को तकवीत देना के मौजू पर बात की। जापान, फिलिपाइन और दीगर के ज़ेर एहतमाम होने वाले इस इजलास में 53 ममालिक और तंजीमों ने शिरकत की। मोतेगी ने मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबसरा करते हुए अपना हुरमुज के जरिए आज़ादाना और महफूज जहाजरानी की बहाली की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस कलीदी आबी गुजरगाह पर मुज़ाकरात के लिए ज़रूरी है कि आबनाए पर मौजूद ममालिक और इसे तरसील के लिए इस्तेमाल करने वालों समेत पूरी बैन अल-अक़वामी बिरादरी इन में शामिल हो। उन्होंने बकौल उनके बुहरे मशरक़ी चीन और बुहरे जनूबी चीन में बज़ोर ताकत या जबर मौजूदा हैसियत को तब्दील करने की मुसलसल और शिद्दत पकड़ती यकतरफा कोशिशों के बारे में चीन की मुखालफत का भी इरादा किया। मोतेगी बज़ाहिर चीन को जहन में रखते हुए ये तबसरा कर रहे थे। उन्होंने बुहरे जनूबी चीन में चीन के इलाकाई दावों को मुस्तरद करने वाले बैन अल-अक़वामी सालिसी ट्रिब्यूनल के 2016 के फैसले पर अमल पैरा ममालिक की अहमियत को उजागर किया। कंबोडिया की हुकूमत ने मीडिया को धोखा दही के अड्डे और तफ्तीशकारों की जानिब से वहां से जब्त की गई अशिया दिखाई हैं। एक अड्डा जो वियतनाम के साथ सरहद के करीब है, तकरीबन 1.2 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर मुहित है। ये एक ऐसे मुकम्मल कस्बे की मानिंद दिखाई देता है जिसमें रेस्तरां तक मौजूद हैं। अड्डे के अंदर मेजों पर कंप्यूटर मॉनिटर रखे थे। एक हिस्से पर सिंगापुर पुलिस का लेबल लगा था। कंबोडियन हुकाम ने कहा कि बावर किया जाता है कि एक जराइम पेशा ग्रोह ने इस पुलिस फोर्स का रूप धार कर धोखा दही अंजाम दी है। मकामी हुकाम और दीगर ओहदेदारों का कहना है कि यह अड्डा कंबोडियन कारपोरेट ग्रुप प्रिंस होल्डिंग ग्रुप के तहत चलाया जा रहा था, जो एशिया की सबसे बड़ी बैन अल-अक़वामी जराइम पेशा तंजीमों में से एक के तौर पर अमरीकी हुकाम की जानिब से पाबंदियों की जद में है। उनका कहना है कि चीनी, वियतनामी और भारतीय शहरियों समेत 20,000 तक गैर मुल्की वहां मुकीम थे। दरियासना मुल्क में फ्रॉड के अड्डों से जब्त किए गए स्मार्टफोन और कंप्यूटरों समेत शवाहिद की कई अशिया दारुलहुकूमत फिनामपेन के एक पुलिस स्टेशन में नुमाइश के लिए रखी गईं। इनमें जापानी पुलिस की जाली वर्दियां और नोटबुक्स शामिल थीं, साथ ही जापानी जबान में लिखे गए नोट्स जिनमें उन जापानी लोगों के नाम, पते और दीगर मालूमात शामिल थीं जिनके बारे में बावर किया जाता है कि उन्हें जराइम पेशा ग्रोहों ने निशाना बनाया था। पुलिस को ऐसा एआई सॉफ्टवेयर भी मिला जो चेहरे की तस्वीर को तब्दील कर सकता है। इससे यह जाहिर होता है कि धोखा दही के तरीके कितने पेचीदा हो चुके हैं। जापानी येन का बुध के रोज न्यूयॉर्क में अमरीकी डॉलर के मुकाबले में 158 की निचली सतह पर लेन देन हुआ। ये 3 हफ्तों में कमजोर तरीन है। जुमेरात को टोक्यो में येन के भाव इसी सतह के इर्द गिर्द चल रहे हैं। अमरीकी कारोबारी सरगर्मी इंडेक्स के आदाद शुमार तवक्को से कई ज्यादा मजबूत आने के बाद येन को फरोख के दबाव का सामना करना पड़ा। इसने इन तवक्कोआत को बढ़ाया कि फेडरल रिजर्व मईशत मजबूत होने के बायस इस साल दोबारा शरह सूद बढ़ा सकता है। इसके नतीजे में इन उम्मीदों पर ऊस पड़ गई है कि अमरीका और जापान के दरमियान शरह सूद का फर्क जल्द ही खत्म हो जाएगा। मंडी जराए का कहना है कि येन की गिरावट ने जापानी हुकूमत और बैंक ऑफ जापान की जानिब से मार्केट मुदाखलत के बारे में खदशात को दोबारा ताजा कर दिया है। और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नजर। चीनी सदर शी जिनपिंग अमेरिका के सरकारी दौरे पर हैं। मई में ट्रंप के बीजिंग के दौरे के बाद यह रवां साल में उनकी सदर ट्रंप से दूसरी सरबर

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 25 सितंबर शुक्रवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खावानो से सुने समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बृहस्पतिवार को वॉशिंगटन में बैठक संपन्न हो गई है। ये इस साल उनकी दूसरी प्रत्यक्ष बैठक थी। इससे पहले ट्रंप ने मई में पेचिंग का दौरा किया था। शिखर बैठक से पहले ट्रंप ने व्हाइट हाउस में आयोजित एक समारोह में शी का स्वागत किया। 2023 के बाद ये शी की पहली अमेरिका यात्रा है। ट्रंप ने कहा, इस यात्रा के दौरान हम सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और सुपर इंटेलिजेंस SI संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में आज हम जो निर्णय लेंगे वे आगामी कई दशकों तक शांति व समृद्धि को बढ़ावा दे सकते हैं। शी ने कहा, चीन और अमेरिका की राष्ट्रीय विशेषताएं अलग अलग हैं, लेकिन स्पष्ट, गहन और निरंतर संवाद के माध्यम से हम एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और मतभेदों को दरकिनार करते हुए तथा आपसी विश्वास का रिश्ता बनाते हुए साझा आधार तलाश सकते हैं। बैठक के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने एक वक्तव्य जारी कर कहा कि शी ने आशा व्यक्त की है कि अमेरिका ताइवान की स्वतंत्रता का विरोध करने के सही दृष्टिकोण को बरकरार रखेगा। शिखर बैठक के बाद पत्रकारों ने ट्रंप से कई सवाल पूछे, जैसे कि क्या उन्होंने ताइवान के मुद्दे पर चर्चा की। इस पर ट्रंप ने बस इतना कहा कि उनकी बैठक शानदार रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आयोजित राजकीय भोज में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने संबोधन में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के खिलाफ चीन और अमेरिका के बीच सहयोग के इतिहास का जिक्र किया। व्हाइट हाउस में बृहस्पतिवार को ट्रंप और शी की शिखर वार्ता के बाद रात्रिभोज का आयोजन किया गया। रात्रिभोज के दौरान अपने स्वागत संबोधन में ट्रंप ने कहा, अपने अपने देशों के नेताओं के रूप में राष्ट्रपति शी और मैं दोनों मानते हैं कि हम अलग अलग व्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन हमारे लोगों के बीच संबंध अटूट हैं और हमारे पहले से कहीं बेहतर रिश्ते हैं। ट्रंप के साथ शिखर वार्ता का जिक्र करते हुए शी ने कहा कि वे कई मुद्दों पर नई आम सहमति पर पहुंचे हैं। शी ने यह भी कहा कि 80 साल से भी पहले चीनी और अमरीकी जनता जापानी सैन्यवादी आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थीं। उन्होंने कहा कि खून और आग में तपी दोस्ती निश्चित रूप से पीढ़ियों तक कायम रहेगी। अमेरिकी पक्ष ने शिखर बैठक के संबंध में कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। दक्षिण प्रशांत महासागर स्थित द्वीपीय देश नावरो के राष्ट्रपति डेविड आडियांग ने घोषणा की है कि उनका देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC से अलग हो जाएगा। गौरतलब है कि नावरो को पहले नावरू के नाम से जाना जाता था। आडियांग ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए ये घोषणा की। आडियांग ने ICC को एक बहुपक्षीय एजेंसी बताया जो अब नावरो के लिए तेजी से अप्रासंगिक होती देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि उनके न्यूयॉर्क से रवाना होने से पहले ICC से अलग होने संबंधी दस्तावेज जमा कर दिए जाएंगे। इससे पहले उसी दिन संयुक्त राष्ट्र के सत्र को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ICC की निंदा की थी। उन्होंने विभिन्न देशों से ICC से अलग होने का आग्रह किया था। पिछले महीने ट्रंप प्रशासन ने ICC अध्यक्ष अकाने तोमोको सहित न्यायालय के नेतृत्व पर प्रतिबंध लगाए थे, जिनके तहत अमेरिका में मौजूद उनकी सभी परिसंपत्तियां फ्रीज करने का प्रावधान है।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। नेपाल सरकार के आपदा राहत प्रभारी का कहना है कि प्रशासन पिछले महीने आई बाढ़ और मृदास्खलन से प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर बसाने की योजना बना रहा है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी धर्म राज उप्रेती ने बृहस्पतिवार को राजधानी काठमांडू में एनएचके से बात की। उप्रेती ने कहा कि सरकार आपदा से प्रभावित नदी के तट और अन्य क्षेत्रों को बसने के लिए असुरक्षित घोषित करने की योजना बना रही है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार सुरक्षित स्थानों का चयन कर रही है जहां लंबे समय तक लोगों को बसाया जा सकता है, साथ ही स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सुविधाओं को स्थानांतरित करने की दिशा में काम हो रहा है। उप्रेती ने कहा कि अगले कुछ हफ्तों में लोगों को दूसरी जगह ले जाने का काम शुरू होने की संभावना है और अधिकारी अस्थायी आवासों की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जापान से सहयोग प्राप्त करने का इरादा रखती है। उप्रेती ने ये भी बताया कि पन बिजली संयंत्र की सुरंगों में फंसे होने की आशंका वाले लोगों के लिए तलाश अभियान 1 से 2 सप्ताह में समाप्त हो सकता है। उत्तर कोरिया द्वारा अपहृत जापानी नागरिकों के परिजनों ने वॉशिंगटन का दौरा कर शेष सभी अपहृतों की शीघ्र स्वदेश वापसी की अपील की है। गौरतलब है कि परिजन समूह के प्रमुख योकोता ताकुया की बड़ी बहन मेगुमी का अपहरण तब किया गया था जब वे 7वीं कक्षा में थीं। उनके अलावा ईजुका कोइचिरो की मां तागुची याए का अपहरण तब किया गया था जब ईजुका 1 वर्ष के थे। योकोता और ईजुका ने अमरीकी राजधानी में सरकारी अधिकारियों और सांसदों से मुलाकात के बाद बुधवार को संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। उन्होंने बल देते हुए कहा कि अपहृतों के परिजनों की उम्र बढ़ती जा रही है। उन्होंने इस मुद्दे पर अमरीकी पक्ष के समर्थन और सहयोग की अपील की। योकोता ने बताया कि उन्होंने लोगों को अपनी मां साकिए और अपनी अपहृत बहन की तस्वीरें दिखाई। साकिए अब 90 वर्ष की है। योकोता ने विश्वास व्यक्त किया कि श्रोताओं की आंखों में आंखें डालकर बोले गए जोशीले शब्द अमरीकी समाज पर गहरा प्रभाव डालेंगे। ईजुका ने चिंता व्यक्त की कि अगर परिजनों ने आवाज उठानी बंद कर दी तो ये मुद्दा भुला दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब तक वे जिंदा हैं, अपील करते रहेंगे। जापान के प्रमुख दीर्घावधि सरकारी बंधपत्रों की ब्याज दर लगभग 30 वर्षों में सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई है। शुक्रवार को 10 वर्षीय बंधपत्रों की ब्याज दर कुछ समय के लिए बढ़कर 3.115% तक पहुंच गई। जापान बॉन्ड ट्रेडिंग का कहना है कि ये आंकड़ा अगस्त 1996 के बाद से उच्चतम स्तर पर है। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण मुद्रा स्फीति को लेकर चिंताओं ने अमेरिका और यूरोप में भी दीर्घावधि ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। इस वजह से जापान के सरकारी बंधपत्रों की बिकवाली तेज हुई और ब्याज दर में उछाल आया। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 30वें पाठ में आप सीखेंगे कई क्रियाएं एक साथ बताना।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम चीनी फोटोग्राफर मिया के साथ एक कैफे में आई है। ताम मिया को जापानी छात्र यूकी के बारे में बता रही है जो संगीत का अध्ययन कर रहा था।
0: तो आइए सुनते हैं 30वें पाठ की बातचीत।
2: मेरोन पफे दे गोजाइमास। ओइशो।
3: ताम, यूकी-सान तो दोको दे आत्ता नो?
4: वियतनाम देस। 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。はい。ゆうきさんに会いたいです。अब
1: इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले कैफे कर्मचारी ने दोनों को पार्फे देते हुए कहा,
2: मेरोन पफे दे गोजाइमास।
1: ये लीजिए मेरोन पफे।
0: पार्फे देखकर ताम उत्सुकता से बोली,
2: ओइशो,
1: स्वादिष्ट लग रहे हैं।
0: दोनों पार्फे खाने लगी। फिर मिया ने पूछा,
3: ताम, यूकी-सान तो दोको दे आत्ता नो?
1: ताम, तुम यूकी जी से कहाँ मिली थी?
0: ताम ने उत्तर दिया,
4: वियतनाम देस।
1: वियतनाम में।
4: 小学校 दे बोरांटिया ओ शिमास्ता।
1: हम एक प्राथमिक स्कूल में स्वयं सेवी थे।
4: इश्शो नी उतात्तारी ओदोत्तारी शिमास्ता।
1: साथ में गाने गाते थे और नाचते थे।
0: ये सुनकर मिया ने कहा,
3: सो दत्ता नो।
1: अच्छा।
0: फिर ताम ने आगे कहा,
4: हाय, यूकी-सान नी आईताई देस।
1: हाँ, यूकी जी से मिलना चाहती हूँ।
0: लगता है ताम और यूकी को स्कूल के बच्चों के साथ नाचने गाने में बहुत मजा आता था। अगर दोनों फिर से एक दूसरे से मिल पाए तो कितना अच्छा होगा।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
4: इश्शो नी उतात्तारी ओदोत्तारी शिमास्ता,
1: यानी साथ में गाने गाते थे और नाचते थे। ये वाक्य सीखकर आप कई क्रियाओं के बारे में एक साथ बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
3: इश्शो नी
0: का अर्थ है साथ में,
3: उतात्तारी
0: है क्रिया,
3: उताऊ
0: यानी गाना का,
3: तारी
0: रूप, और
3: ओदोत्तारी
0: है क्रिया,
3: ओदोरु
0: यानी नाचना का,
3: थारी
0: रूप, और वाक्य के अंत में लगा है
3: शिमास्ता
0: जिसका मतलब है किया।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि कई क्रियाओं में से कुछ के उदाहरण देते समय क्रिया के
3: थारी
1: रूप का उपयोग करते हैं। तारी रूप बनाने के लिए पहले क्रिया का ते रूप बनाइए और फिर उसमें से ते हटाकर तारी जोड़िए।
0: जैसे इस वाक्य में ताम बता रही है कि स्वयं सेवियों के तौर पर वो और यूकी साथ में बहुत सारे काम करते थे, जिनमें से दो उदाहरण हैं गाना और नाचना। इसलिए ताम ने कहा उतात्तारी ओदोत्तारी।
1: और क्योंकि ये पुरानी बात है इसलिए ताम ने वाक्य के अंत में लगाया
3: शिमास्ता
1: जो करना का भूतकाल रूप है।
0: तो अब आप भी ये वाक्य सुनकर साथ साथ उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
3: उतात्तारी ओदोत्तारी शिमास्ता। इश्शो नी उतात्तारी ओदोत्तारी शिमास्ता।
1: अब एक और छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक पर्यटक बता रहा है कि वो होक्काइडो में क्या क्या करना चाहता है।
5: होक्काइडो दे नानी ओ शिमास का? हाइकिंग ओ शितारी ओनसेन नी हाइत्तारी शिताई देस।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
1: पहले एक आदमी ने पूछा,
5: होक्काइडो दे नानी ओ शिमास का?
0: होक्काइडो में क्या करने वाले हैं?
1: यहाँ
3: होक्काइडो दे
1: का अर्थ है होक्काइडो में और
3: नानी ओ शिमास का
1: का अर्थ है क्या करने वाले हैं। जवाब में दूसरे आदमी ने कहा,
5: हाइकिंग ओ शितारी ओनसेन नी हाइत्तारी शिताई देस।
0: हाइकिंग करना चाहता हूँ और ओनसेन में नहाना चाहता हूँ।
6: हाइकिंग वो शितारी
1: है।
6: हाइकिंग वो सुर
1: यानी हाइकिंग करना का तारी रूप और
6: ओनसेन नी हाइतारी
1: है।
6: ओनसेन नी हाइर
1: यानी ओनसेन में नहाने का तारी रूप।
0: इस वाक्य में दूसरे आदमी ने अपनी इच्छा बताई, इसलिए उसने वाक्य के अंत में लगाया
6: शिताई देस
0: यानी करना चाहता हूँ। इससे आप समझ सकते हैं कि तारी का इस्तेमाल पुरानी बात बताने के लिए भी किया जा सकता है और भविष्य की बात या इच्छा बताने के लिए भी।
1: तो वाक्य सुनिए और साथ साथ दोहरा कर अभ्यास कर लीजिए।
6: हाइकिंग वो शितारी ओनसेन नी हाइतारी शिताई देस। हाइकिंग वो शितारी ओनसेन नी हाइतारी शिताई देस।
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप ओकिनावा घूमने गए थे और किसी ने आपसे पूछा कि आपने वहां पर क्या किया। आप उन्हें बताना चाहते हैं कि खरीदारी की और समुद्र में तैराकी की।
1: खरीदारी करना को जापानी भाषा में कहते हैं
6: काइमोनो सुरु। काइमोनो सुरु
1: क्रिया सुरु यानी करना का तारी रूप है
6: शितारी।
1: और समुद्र में तैरना को जापानी भाषा में कहेंगे
6: उमी दे ओयोग। उमी दे ओयोग
1: क्रिया तैरना का तारी रूप है
6: ओयोइदारी। ओयोइदारी
1: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
5: काइमोनो वो शितारी उमी दे ओयोइदारी शिमाशिता।
0: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो ताम की पंक्ति है। आप भी इसे याद कर लीजिए।
2: ओइसो।
6: ओइसो
0: का अर्थ है स्वादिष्ट लग रहा है। अगर आपने कोई चीज अभी तक नहीं खाई है और वो दिखने में स्वादिष्ट लग रही है तो आप कहेंगे
6: ओइसो।
0: कोई चीज खाकर अगर स्वादिष्ट

0: さんに会いたいです。
1: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: अब हम लेकर आए हैं अंश काइतो के साथ खाना पीना। आज के पाठ में ताम और मिया ने मेरोन पार्फे खाया, इसलिए आज हम बता रहे हैं जापान की मिठाइयों और नमकीन के बारे में।
3: जापान में मिठाइयों और नमकीन में बहुत विविधता देखने को मिलती है। इनमें जापान की पारंपरिक मिठाइयाँ और नमकीन के अलावा पश्चिमी शैली की मिठाइयाँ और नमकीन भी शामिल है।
2: लेकिन पश्चिमी शैली की बहुत सारी मिठाइयाँ भी यहाँ जापान के रंग में ढल चुकी हैं। जैसे जापान के शॉर्ट केक का उदाहरण लेते हैं। ये स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक जैसा दिखता है, लेकिन इसमें स्पंज केक का इस्तेमाल होता है।
3: कुछ आम जापानी मिठाइयाँ और नमकीन हैं चावल की टिक्कियाँ, चावल के पापड़ और लाल मूंग के मीठे पेस्ट भरे बन। इनके अलावा मौसमी विशिष्टताएं भी हैं, जैसे गर्मियों में तरह तरह की बर्फ की चुस्कियां और सर्दियों में लाल मूंग का मीठा सूप।
2: जापान की मिठाइयां सुंदर दिखने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। वसंत में चेरी के फूलों और पत्तों वाली चावल की टिक्कियां और गर्मियों में सितारों जड़े आसमान या साफ नदी जैसी छवियों पर आधारित ताजगी भरी मिठाइयां बहुत आकर्षक लगती हैं।
3: जापान में आप भी यहाँ की मिठाइयों की खूबसूरती और स्वाद का आनंद जरूर लीजिएगा।
2: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
3: अगले पाठ में जापान की पॉप संस्कृति का जानकार माइक हारुसान हाउस आएगा। तब तक के लिए सायोनारा।
4: फोसो रेडियो निप्पन देस। टोक्यो करा ओकुरी शिमासु।
5: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 25 सितंबर शुक्रवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खावानो से सुने समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बृहस्पतिवार को वॉशिंगटन में बैठक संपन्न हो गई है। ये इस साल उनकी दूसरी प्रत्यक्ष बैठक थी। इससे पहले ट्रंप ने मई में पेइचिंग का दौरा किया था। शिखर बैठक से पहले ट्रंप ने व्हाइट हाउस में आयोजित एक समारोह में शी का स्वागत किया। 2023 के बाद ये शी की पहली अमेरिका यात्रा है। ट्रंप ने कहा, इस यात्रा के दौरान हम सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और सुपर इंटेलिजेंस SI संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में आज हम जो निर्णय लेंगे वे आगामी कई दशकों तक शांति व समृद्धि को बढ़ावा दे सकते हैं। शी ने कहा, चीन और अमेरिका की राष्ट्रीय विशेषताएं अलग अलग हैं, लेकिन स्पष्ट, गहन और निरंतर संवाद के माध्यम से हम एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और मतभेदों को दरकिनार करते हुए तथा आपसी विश्वास का रिश्ता बनाते हुए साझा आधार तलाश सकते हैं। बैठक के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने एक वक्तव्य जारी कर कहा कि शी ने आशा व्यक्त की है कि अमेरिका ताइवान की स्वतंत्रता का विरोध करने के सही दृष्टिकोण को बरकरार रखेगा। शिखर बैठक के बाद पत्रकारों ने ट्रंप से कई सवाल पूछे, जैसे कि क्या उन्होंने ताइवान के मुद्दे पर चर्चा की। इस पर ट्रंप ने बस इतना कहा कि उनकी बैठक शानदार रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आयोजित राजकीय भोज में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने संबोधन में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के खिलाफ चीन और अमेरिका के बीच सहयोग के इतिहास का जिक्र किया। व्हाइट हाउस में बृहस्पतिवार को ट्रंप और शी की शिखर वार्ता के बाद रात्रिभोज का आयोजन किया गया। रात्रिभोज के दौरान अपने स्वागत संबोधन में ट्रंप ने कहा, अपने अपने देशों के नेताओं के रूप में राष्ट्रपति शी और मैं दोनों मानते हैं कि हम अलग अलग व्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन हमारे लोगों के बीच संबंध अटूट हैं और हमारे पहले से कहीं बेहतर रिश्ते हैं। ट्रंप के साथ शिखर वार्ता का जिक्र करते हुए शी ने कहा कि वे कई मुद्दों पर नई आम सहमति पर पहुंचे हैं। शी ने यह भी कहा कि 80 साल से भी पहले चीनी और अमरीकी जनता जापानी सैन्यवादी आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थीं। उन्होंने कहा कि खून और आग में तपी दोस्ती निश्चित रूप से पीढ़ियों तक कायम रहेगी। अमेरिकी पक्ष ने शिखर बैठक के संबंध में कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। दक्षिण प्रशांत महासागर स्थित द्वीपीय देश नावरो के राष्ट्रपति डेविड आडियांग ने घोषणा की है कि उनका देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC से अलग हो जाएगा। गौरतलब है कि नावरो को पहले नावरू के नाम से जाना जाता था। आडियांग ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। आडियांग ने ICC को एक बहुपक्षीय एजेंसी बताया जो अब नावरो के लिए तेजी से अप्रासंगिक होती देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि उनके न्यूयॉर्क से रवाना होने से पहले ICC से अलग होने संबंधी दस्तावेज जमा कर दिए जाएंगे। इससे पहले उसी दिन संयुक्त राष्ट्र के सत्र को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ICC की निंदा की थी। उन्होंने विभिन्न देशों से ICC से अलग होने का आग्रह किया था। पिछले महीने ट्रंप प्रशासन ने ICC अध्यक्ष अकाने तोमोको सहित न्यायालय के नेतृत्व पर प्रतिबंध लगाए थे, जिनके तहत अमेरिका में मौजूद उनकी सभी परिसंपत्तियां फ्रीज करने का प्रावधान है।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। नेपाल सरकार के आपदा राहत प्रभारी का कहना है कि प्रशासन पिछले महीने आई बाढ़ और मृदा स्खलन से प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर बसाने की योजना बना रहा है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी धर्म राज उप्रेती ने बृहस्पतिवार को राजधानी काठमांडू में एनएचके से बात की। उप्रेती ने कहा कि सरकार आपदा से प्रभावित नदी के तट और अन्य क्षेत्रों को बसने के लिए असुरक्षित घोषित करने की योजना बना रही है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार सुरक्षित स्थानों का चयन कर रही है जहां लंबे समय तक लोगों को बसाया जा सकता है। साथ ही स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सुविधाओं को स्थानांतरित करने की दिशा में काम हो रहा है। उप्रेती ने कहा कि अगले कुछ हफ्तों में लोगों को दूसरी जगह ले जाने का काम शुरू होने की संभावना है और अधिकारी अस्थायी आवासों की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जापान से सहयोग प्राप्त करने का इरादा रखती है। उप्रेती ने ये भी बताया कि पन बिजली संयंत्र की सुरंगों में फंसे होने की आशंका वाले लोगों के लिए तलाश अभियान 1 से 2 सप्ताह में समाप्त हो सकता है। उत्तर कोरिया द्वारा अपहृत जापानी नागरिकों के परिजनों ने वॉशिंगटन का दौरा कर शेष सभी अपहृतों की शीघ्र स्वदेश वापसी की अपील की है। गौरतलब है कि परिजन समूह के प्रमुख योकोता ताकुया की बड़ी बहन मेगुमी का अपहरण तब किया गया था जब वे 7वीं कक्षा में थीं। उनके अलावा ईजुका कोइचिरो की मां तागुची याए का अपहरण तब किया गया था जब ईजुका 1 वर्ष के थे। योकोता और ईजुका ने अमरीकी राजधानी में सरकारी अधिकारियों और सांसदों से मुलाकात के बाद बुधवार को संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। उन्होंने बल देते हुए कहा कि अपहृतों के परिजनों की उम्र बढ़ती जा रही है। उन्होंने इस मुद्दे पर अमरीकी पक्ष के समर्थन और सहयोग की अपील की। योकोता ने बताया कि उन्होंने लोगों को अपनी मां साकिए और अपनी अपहृत बहन की तस्वीरें दिखाई। साकिए अब 90 वर्ष की है। योकोता ने विश्वास व्यक्त किया कि श्रोताओं की आंखों में आंखें डालकर बोले गए जोशीले शब्द अमरीकी समाज पर गहरा प्रभाव डालेंगे। ईजुका ने चिंता व्यक्त की कि अगर परिजनों ने आवाज उठानी बंद कर दी तो ये मुद्दा भुला दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब तक वे जिंदा हैं, अपील करते रहेंगे। जापान के प्रमुख दीर्घावधि सरकारी बंधपत्रों की ब्याज दर लगभग 30 वर्षों में सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई है। शुक्रवार को 10 वर्षीय बंधपत्रों की ब्याज दर कुछ समय के लिए बढ़कर 3.115% तक पहुंच गई। जापान बॉन्ड ट्रेडिंग का कहना है कि आंकड़ा अगस्त 1996 के बाद से उच्चतम स्तर पर है। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण मुद्रा स्फीति को लेकर चिंताओं ने अमेरिका और यूरोप में भी दीर्घावधि ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। इस वजह से जापान के सरकारी बंधपत्रों की बिकवाली तेज हुई और ब्याज दर में उछाल आया। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूँ चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूँ सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 30वें पाठ में आप सीखेंगे कई क्रियाएं एक साथ बताना।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम चीनी फोटोग्राफर मिया के साथ एक कैफे में आई है। ताम मिया को जापानी छात्र यूकी के बारे में बता रही है जो संगीत का अध्ययन कर रहा था।
0: तो आइए सुनते हैं 30वें पाठ की बातचीत।
2: मेरोन पफे दे गोजाइमास। ओइशो।
3: ताम, यूकी-सान तो दोको दे आत्ता नो?
4: वियतनाम देस। 小学校でボランティアをしました。 一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
4: はい。 ゆうきさんに会いたいです。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले कैफे कर्मचारी ने दोनों को पार्फे देते हुए कहा,
2: मेरोन पफे दे गोजाइमास।
1: ये लीजिए मेरोन पफे।
0: पार्फे देखकर ताम उत्सुकता से बोली,
2: ओइशो।
1: स्वादिष्ट लग रहे हैं।
0: दोनों पार्फे खाने लगीं। फिर मिया ने पूछा,
3: ताम, यूकी-सान तो दोको दे आत्ता नो?
1: ताम, तुम यूकी जी से कहाँ मिली थी?
0: ताम ने उत्तर दिया,
4: वियतनाम देस।
1: वियतनाम में।
4: 小学校でボランティアをしました।
1: हम एक प्राथमिक स्कूल में स्वयं सेवी थे।
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました।
1: साथ में गाने गाते थे और नाचते थे।
0: ये सुनकर मिया ने कहा,
3: सो दत्ता नो।
1: अच्छा।
0: फिर ताम ने आगे कहा,
4: हाय, यूकी-सानी आईताई देस।
1: हाँ, यूकी जी से मिलना चाहती हूँ।
0: लगता है ताम और यूकी को स्कूल के बच्चों के साथ नाचने गाने में बहुत मजा आता था। अगर दोनों फिर से एक दूसरे से मिल पाए तो कितना अच्छा होगा।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました।
1: यानी साथ में गाने गाते थे और नाचते थे। ये वाक्य सीखकर आप कई क्रियाओं के बारे में एक साथ बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
3: 一緒に
0: का अर्थ है साथ में,
3: 歌ったり
0: है क्रिया,
3: 歌う
0: यानी गाना का
3: たり
0: रूप, और
3: 踊ったり
0: है क्रिया,
3: 踊る
0: यानी नाचना का
3: たり
0: रूप, और वाक्य के अंत में लगा है
3: しました,
0: जिसका मतलब है किया।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि कई क्रियाओं में से कुछ के उदाहरण देते समय क्रिया के
3: तारी
1: रूप का उपयोग करते हैं। तारी रूप बनाने के लिए पहले क्रिया का ते रूप बनाइए और फिर उसमें से ते हटाकर तारी जोड़िए।
0: जैसे इस वाक्य में ताम बता रही है कि स्वयं सेवियों के तौर पर वो और यूकी साथ में बहुत सारे काम करते थे, जिनमें से दो उदाहरण हैं गाना और नाचना। इसलिए ताम ने कहा, उतात्तारी उदोत्तारी।
1: और क्योंकि ये पुरानी बात है, इसलिए ताम ने वाक्य के अंत में लगाया
3: शिमाश्ता,
1: जो करना का भूतकाल रूप है।
0: तो अब आप भी ये वाक्य सुनकर साथ साथ उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
3: उतात्तारी उदोत्तारी शिमाश्ता। 一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: अब एक और छोटी सी बातचीत सुनते हैं, जिसमें एक पर्यटक बता रहा है कि वो होक्काइडो में क्या क्या करना चाहता है।
5: होक्काइडो दे नानी ओ शिमास का? हाइकिंग ओ शितारी ओनसेन नी हाइत्तारी शिताई देस।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
1: पहले एक आदमी ने पूछा,
5: होक्काइडो दे नानी ओ शिमास का?
0: होक्काइडो में क्या करने वाले हैं?
1: यहाँ
3: होक्काइडो दे
1: का अर्थ है होक्काइडो में, और
3: नानी ओ शिमास
1: का अर्थ है क्या करने वाले हैं। जवाब में दूसरे आदमी ने कहा,
5: हाइकिंग ओ शितारी ओनसेन नी हाइत्तारी शिताई देस।
0: हाइकिंग करना चाहता हूँ और ओनसेन में नहाना चाहता हूँ।
6: हाइकिंग वो शितारी
1: है।
6: हाइकिंग वो सुरु
1: यानी हाइकिंग करना का तारी रूप, और
6: ओनसेन नी हाइतारी
1: है।
6: ओनसेन नी हाइरु
1: यानी ओनसेन में नहाने का तारी रूप।
0: इस वाक्य में दूसरे आदमी ने अपनी इच्छा बताई, इसलिए उसने वाक्य के अंत में लगाया
6: शिताई देसु
0: यानी करना चाहता हूँ। इससे आप समझ सकते हैं कि तारी का इस्तेमाल पुरानी बात बताने के लिए भी किया जा सकता है और भविष्य की बात या इच्छा बताने के लिए भी।
1: तो वाक्य सुनिए और साथ साथ दोहरा कर अभ्यास कर लीजिए।
6: हाइकिंग वो शितारी ओनसेन नी हाइतारी शिताई देसु। हाइकिंग वो शितारी ओनसेन नी हाइतारी शिताई देसु।
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप ओकिनावा घूमने गए थे और किसी ने आपसे पूछा कि आपने वहां पर क्या किया। आप उन्हें बताना चाहते हैं कि खरीदारी की और समुद्र में तैराकी की।
1: खरीदारी करना को जापानी भाषा में कहते हैं
6: काइमोनो सुरु। काइमोनो सुरु
1: क्रिया सुरु यानी करना का तारी रूप है
6: शितारी।
1: और समुद्र में तैरना को जापानी भाषा में कहेंगे
6: उमी दे ओयोगु। उमी दे ओयोगु
1: क्रिया तैरना का तारी रूप है
6: ओयोइदारी। ओयोइदारी।
1: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
5: काइमोनो वो शितारी उमी दे ओयोइदारी शिमाशिता।
0: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो ताम की पंक्ति है। आप भी इसे याद कर लीजिए।
2: ओइशो।
6: ओइशो
0: का अर्थ है स्वादिष्ट लग रहा है। अगर आपने कोई चीज अभी तक नहीं खाई है और वो दिखने में स्वादिष्ट लग रही है तो आप कहेंगे
6: ओइशो।
0: कोई चीज खाकर अगर स्वादिष्ट लगे तो कहेंगे
6: ओइशी।
1: अब आप भी उच्चारण का अभ्यास कर लीजिए।
6: ओइशो।
0: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。

0: और नमकीन के अलावा पश्चिमी शैली की मिठाइयाँ और नमकीन भी शामिल हैं।
1: लेकिन पश्चिमी शैली की बहुत सारी मिठाइयाँ भी यहाँ जापान के रंग में ढल चुकी हैं। जैसे जापान के शॉर्टकेक का उदाहरण लेते हैं, ये स्ट्रॉबेरी शॉर्टकेक जैसा दिखता है लेकिन इसमें स्पंज केक का इस्तेमाल होता है।
0: कुछ आम जापानी मिठाइयाँ और नमकीन हैं चावल की टिक्कियाँ, चावल के पापड़ और लाल मूंग के मीठे पेस्ट भरे बन। इनके अलावा मौसमी विशिष्टताएं भी हैं, जैसे गर्मियों में तरह तरह की बर्फ की चुस्कियाँ और सर्दियों में लाल मूंग का मीठा सूप।
1: जापान की मिठाइयाँ सुंदर दिखने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। बसंत में चेरी के फूलों और पत्तों वाली चावल की टिक्कियाँ और गर्मियों में सितारों जड़े आसमान या साफ नदी जैसी छवियों पर आधारित ताजगी भरी मिठाइयाँ बहुत आकर्षक लगती हैं।
0: जापान में आप भी यहाँ की मिठाइयों की खूबसूरती और स्वाद का आनंद जरूर लीजिएगा।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में जापान की पॉप संस्कृति का जानकार माइक हारुसान हाउस आएगा। तब तक के लिए सायोनारा।
2: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
3: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

नारूह के नाम से जाना जाता था। डेविड आडियांग ने यह ऐलान मंगल के रोज अकवाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से अपने खिताब में किया। आडियांग ने आईसीसी को एक कसीर उजहती एजेंसी करार देते हुए कहा, यह हमारे नजदीक नायरू के लिए गैर मुतलिका होती जा रही है। उन्होंने कहा कि उनके न्यूयॉर्क छोड़ने से कबल उनका मुल्क दस्तबरदारी की दस्तावेजात जमा कराएगा। कबल अज़ां अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उसी दिन अकवाम मुत्तहिदा के इजलास से खिताब में आईसीसी की मजम्मत की थी। उन्होंने ममालिक पर जोर दिया कि वो ये अदालत छोड़ दें। गुज़श्ता माह ट्रंप इंतजामिया ने आईसीसी की क़यादत पर पाबंदियां आयद की थीं, जिनमें सदर अकाने तोमो को भी शामिल है। इन इकदाम में अमरीका में मौजूद किसी भी असासे को मुंजमित करने का कहा गया था।

0: ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। अब आज की बाकी खबरें समाप्त फरमाइए। आफात से निमटने के जिम्मेदार नेपाली हुकूमत के एक ओहदेदार का कहना है कि हुक्काम गुज़िश्ता माह आने वाले हलाकत खेज सैलाबी रैले और मिट्टी के तोदों से मुतासर इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव धर्म राज अप्रेती ने जुमेरात को नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में NHK से बात की। उन्होंने कहा कि हुकूमत दरिया के किनारे और आफत से मुतासरा दीगर इलाकों को आबादी के लिए गैर महफूज करार देने का इरादा रखती है। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत तवील मुद्दती आबादकारी के लिए महफूज मकामात का इंतखाब कर रही है और स्कूलों, हस्पतालों और दीगर सहूलियात की मुंतकिली के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए मकामात पर मुंतकिली मुमकिन तौर पर अगले 2 हफ्तों में शुरू हो जाएगी और हुकाम आर्जी रिहाइश की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत जापान से तआवुन तलब करने का इरादा रखती है। उन्होंने ये भी कहा कि पन बिजली घरों की सुरंगों में फंसे हुए लोगों की तलाश के लिए ऑपरेशन मुमकिन तौर पर 1 से 2 हफ्तों में खत्म हो सकता है। शिमाली कोरिया की तरफ से अगवा किए गए जापानी शहरियों के खानदान के अरकान ने तमाम बाकी मानदा अगवा शुदगान को जल्द अज जल्द घर वापस लाने के लिए मदद की अपील करने की खातिर वॉशिंगटन का दौरा किया है। योकोता ताकुया अगवा शुदगान के खानदानों के एक ग्रुप के सरबराह हैं। उनकी बड़ी बहन मेगुमी को उस वक्त अगवा किया गया था जब वो जूनियर हाई स्कूल के पहले साल की तालिबा थी। ईजुका को इचिरो की वालिदा तागुची जायको को उस वक्त उठा लिया गया था जब वो सिर्फ 1 साल के थे। योकोता और ईजुका ने अमरीकी दारुल हुकूमत में सरकारी हुक्काम और कानून साजों से मुलाकात के बाद बुध को एक न्यूज कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगवाशुदगान के रिश्तेदार बूढ़े हो रहे हैं और ये कि उन्होंने इस मामले के सिलसिले में अमरीकी हुकूमत से तफहीम और तआवुन की दरख्वास्त की थी। योकोता ने कहा कि उन्होंने लोगों को अपनी वालिदा साकिए और अपनी अगवाशुदा बहन की तस्वीर दिखाई। साकिए अब 90 साल की हैं। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि जज्बे के साथ पहुंचाए गए और सुनने वालों की आंखों में देखकर बोले गए अल्फाज अमरीकी मुआशरे में गूंजेंगे। ईजुका ने तश्वीश जाहिर की कि अगर रिश्तेदारों ने आवाज उठाना जारी न रखा तो ये मामला भुलाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वो जब तक जिंदा हैं अपीलें करते रहना चाहते हैं। जापान के मयारी तवील मुद्दती हुकूमती बॉन्ड का मुनाफा तकरीबन 30 सालों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। जुमे को एक मरहले पर 10 साला बॉन्ड का मुनाफा 3.115% तक पहुंच गया। जापान बॉन्ड ट्रेडिंग का कहना है कि ये शरह अगस्त 1996 के बाद सबसे ज्यादा है। खाम तेल की बुलंद कीमतों की वजह से अफरातजर के खदशात ने अमरीकी और यूरोपी तवील मुद्दती शरह सूद को भी बढ़ा दिया है। इसके बायस जापानी हुकूमती बॉन्डों की फरोख्त में इजाफा हुआ और मुनाफे की शरह बुलंद रही।
1: और सामेन, आखिर में आज की अहम खबर का खुलासा पेश है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग ने वॉशिंगटन में अपनी सरबराही मुलाकात समेट ली है। जुमेरात को होने वाली मुलाकात मई में ट्रंप के बीजिंग के दौरे के बाद इस साल उनकी दूसरी रूबरू बातचीत थी। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 25 सितंबर शुक्रवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खावानो से सुने समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बृहस्पतिवार को वॉशिंगटन में बैठक संपन्न हो गई है। ये इस साल उनकी दूसरी प्रत्यक्ष बैठक थी। इससे पहले ट्रंप ने मई में पेइचिंग का दौरा किया था। शिखर बैठक से पहले ट्रंप ने व्हाइट हाउस में आयोजित एक समारोह में शी का स्वागत किया। 2023 के बाद ये शी की पहली अमेरिका यात्रा है। ट्रंप ने कहा, इस यात्रा के दौरान हम सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और सुपर इंटेलिजेंस SI संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में आज हम जो निर्णय लेंगे वे आगामी कई दशकों तक शांति व समृद्धि को बढ़ावा दे सकते हैं। शी ने कहा, चीन और अमेरिका की राष्ट्रीय विशेषताएं अलग अलग हैं, लेकिन स्पष्ट, गहन और निरंतर संवाद के माध्यम से हम एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और मतभेदों को दरकिनार करते हुए तथा आपसी विश्वास का रिश्ता बनाते हुए साझा आधार तलाश सकते हैं। बैठक के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने एक वक्तव्य जारी कर कहा कि शी ने आशा व्यक्त की है कि अमेरिका ताइवान की स्वतंत्रता का विरोध करने के सही दृष्टिकोण को बरकरार रखेगा। शिखर बैठक के बाद पत्रकारों ने ट्रंप से कई सवाल पूछे, जैसे कि क्या उन्होंने ताइवान के मुद्दे पर चर्चा की। इस पर ट्रंप ने बस इतना कहा कि उनकी बैठक शानदार रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आयोजित राजकीय भोज में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने संबोधन में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के खिलाफ चीन और अमेरिका के बीच सहयोग के इतिहास का जिक्र किया। व्हाइट हाउस में बृहस्पतिवार को ट्रंप और शी की शिखर वार्ता के बाद रात्रिभोज का आयोजन किया गया। रात्रिभोज के दौरान अपने स्वागत संबोधन में ट्रंप ने कहा, अपने अपने देशों के नेताओं के रूप में राष्ट्रपति शी और मैं दोनों मानते हैं कि हम अलग अलग व्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन हमारे लोगों के बीच संबंध अटूट हैं और हमारे पहले से कहीं बेहतर रिश्ते हैं। ट्रंप के साथ शिखर वार्ता का जिक्र करते हुए शी ने कहा कि वे कई मुद्दों पर नई आम सहमति पर पहुंचे हैं। शी ने यह भी कहा कि 80 साल से भी पहले चीनी और अमरीकी जनता जापानी सैन्यवादी आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थीं। उन्होंने कहा कि खून और आग में तपी दोस्ती निश्चित रूप से पीढ़ियों तक कायम रहेगी। अमेरिकी पक्ष ने शिखर बैठक के संबंध में कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। दक्षिण प्रशांत महासागर स्थित द्वीपीय देश नावरो के राष्ट्रपति डेविड आडियांग ने घोषणा की है कि उनका देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC से अलग हो जाएगा। गौरतलब है कि नावरो को पहले नावरू के नाम से जाना जाता था। आडियांग ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए ये घोषणा की। आडियांग ने ICC को एक बहुपक्षीय एजेंसी बताया जो अब नावरो के लिए तेजी से अप्रासंगिक होती देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि उनके न्यूयॉर्क से रवाना होने से पहले ICC से अलग होने संबंधी दस्तावेज जमा कर दिए जाएंगे। इससे पहले उसी दिन संयुक्त राष्ट्र के सत्र को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ICC की निंदा की थी। उन्होंने विभिन्न देशों से ICC से अलग होने का आग्रह किया था। पिछले महीने ट्रंप प्रशासन ने ICC अध्यक्ष अकाने तोमोको सहित न्यायालय के नेतृत्व पर प्रतिबंध लगाए थे, जिनके तहत अमेरिका में मौजूद उनकी सभी परिसंपत्तियां फ्रीज करने का प्रावधान है।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। नेपाल सरकार के आपदा राहत प्रभारी का कहना है कि प्रशासन पिछले महीने आई बाढ़ और मृदास्खलन से प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर बसाने की योजना बना रहा है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी धर्म राज उप्रेती ने बृहस्पतिवार को राजधानी काठमांडू में एनएचके से बात की। उप्रेती ने कहा कि सरकार आपदा से प्रभावित नदी के तट और अन्य क्षेत्रों को बसने के लिए असुरक्षित घोषित करने की योजना बना रही है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार सुरक्षित स्थानों का चयन कर रही है जहां लंबे समय तक लोगों को बसाया जा सकता है, साथ ही स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सुविधाओं को स्थानांतरित करने की दिशा में काम हो रहा है। उप्रेती ने कहा कि अगले कुछ हफ्तों में लोगों को दूसरी जगह ले जाने का काम शुरू होने की संभावना है और अधिकारी अस्थायी आवासों की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जापान से सहयोग प्राप्त करने का इरादा रखती है। उप्रेती ने ये भी बताया कि पन बिजली संयंत्र की सुरंगों में फंसे होने की आशंका वाले लोगों के लिए तलाश अभियान 1 से 2 सप्ताह में समाप्त हो सकता है। उत्तर कोरिया द्वारा अपहृत जापानी नागरिकों के परिजनों ने वॉशिंगटन का दौरा कर शेष सभी अपहृतों की शीघ्र स्वदेश वापसी की अपील की है। गौरतलब है कि परिजन समूह के प्रमुख योकोता ताकुया की बड़ी बहन मेगुमी का अपहरण तब किया गया था जब वे 7वीं कक्षा में थीं। उनके अलावा ईजुका कोइचिरो की मां तागुची याए का अपहरण तब किया गया था जब ईजुका 1 वर्ष के थे। योकोता और ईजुका ने अमरीकी राजधानी में सरकारी अधिकारियों और सांसदों से मुलाकात के बाद बुधवार को संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। उन्होंने बल देते हुए कहा कि अपहृतों के परिजनों की उम्र बढ़ती जा रही है। उन्होंने इस मुद्दे पर अमरीकी पक्ष के समर्थन और सहयोग की अपील की। योकोता ने बताया कि उन्होंने लोगों को अपनी मां साकिए और अपनी अपहृत बहन की तस्वीरें दिखाई। साकिए अब 90 वर्ष की है। योकोता ने विश्वास व्यक्त किया कि श्रोताओं की आंखों में आंखें डालकर बोले गए जोशीले शब्द अमरीकी समाज पर गहरा प्रभाव डालेंगे। ईजुका ने चिंता व्यक्त की कि अगर परिजनों ने आवाज उठानी बंद कर दी तो ये मुद्दा भुला दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब तक वे जिंदा हैं, अपील करते रहेंगे। जापान के प्रमुख दीर्घावधि सरकारी बंध पत्रों की ब्याज दर लगभग 30 वर्षों में सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई है। शुक्रवार को 10 वर्षीय बंध पत्रों की ब्याज दर कुछ समय के लिए बढ़कर 3.115% तक पहुंच गई। जापान बॉन्ड ट्रेडिंग का कहना है कि आंकड़ा अगस्त 1996 के बाद से उच्चतम स्तर पर है। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण मुद्रा स्फीति को लेकर चिंताओं ने अमेरिका और यूरोप में भी दीर्घावधि ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। इस वजह से जापान के सरकारी बंधपत्रों की बिकवाली तेज हुई और ब्याज दर में उछाल आया। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूँ चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूँ सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 30वें पाठ में आप सीखेंगे कई क्रियाएं एक साथ बताना।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम चीनी फोटोग्राफर मिया के साथ एक कैफे में आई है। ताम मिया को जापानी छात्र यूकी के बारे में बता रही है जो संगीत का अध्ययन कर रहा था।
0: तो आइए सुनते हैं 30वें पाठ की बातचीत।
2: मेरोन पाफे दे गोजाइमास। ओइशो।
3: ताम, यूकी-सान तो दोको दे आत्ता नो?
2: वियतनाम देस। 小学校でボランティアをしました。 一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
2: はい。 ゆうきさんに会いたいです。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले कैफे कर्मचारी ने दोनों को पार्फे देते हुए कहा,
2: मेरोन पाफे दे गोजाइमास।
1: ये लीजिए मेरोन पाफे।
0: पार्फे देखकर ताम उत्सुकता से बोली,
2: ओइशो,
1: स्वादिष्ट लग रहे हैं।
0: दोनों पार्फे खाने लगी। फिर मिया ने पूछा,
3: ताम, यूकी-सान तो दोको दे आत्ता नो?
1: ताम, तुम यूकी जी से कहाँ मिली थी?
0: ताम ने उत्तर दिया,
2: वियतनाम देस।
1: वियतनाम में।
2: 小学校でボランティアをしました।
1: हम एक प्राथमिक स्कूल में स्वयं सेवी थे।
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました।
1: साथ में गाने गाते थे और नाचते थे।
0: ये सुनकर मिया ने कहा,
3: そうだったの।
1: अच्छा।
0: फिर ताम ने आगे कहा,
2: はい, ゆうきさんに会いたいです।
1: हाँ, यूकी जी से मिलना चाहती हूँ।
0: लगता है ताम और यूकी को स्कूल के बच्चों के साथ नाचने गाने में बहुत मजा आता था। अगर दोनों फिर से एक दूसरे से मिल पाए तो कितना अच्छा होगा।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました।
1: यानी साथ में गाने गाते थे और नाचते थे। ये वाक्य सीखकर आप कई क्रियाओं के बारे में एक साथ बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
3: 一緒に
0: का अर्थ है साथ में,
3: 歌ったり
0: है क्रिया,
3: 歌う
0: यानी गाना का
3: たり
0: रूप, और
3: 踊ったり
0: है क्रिया,
3: 踊る
0: यानी नाचना का
3: たり
0: रूप, और वाक्य के अंत में लगा है
3: しました
0: जिसका मतलब है किया।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि कई क्रियाओं में से कुछ के उदाहरण देते समय क्रिया के
3: तारी
1: रूप का उपयोग करते हैं। तारी रूप बनाने के लिए पहले क्रिया का ते रूप बनाइए और फिर उसमें से ते हटाकर तारी जोड़िए।
0: जैसे इस वाक्य में ताम बता रही है कि स्वयं सेवियों के तौर पर वो और यूकी साथ में बहुत सारे काम करते थे, जिनमें से दो उदाहरण है गाना और नाचना। इसलिए ताम ने कहा, उतातारी ओदोतारी।
1: और क्योंकि ये पुरानी बात है इसलिए ताम ने वाक्य के अंत में लगाया
3: शिमाश्ता,
1: जो करना का भूतकाल रूप है।
0: तो अब आप भी ये वाक्य सुनकर साथ साथ उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
3: उतातारी ओदोतारी शिमाश्ता। इश्योनी उतातारी ओदोतारी शिमाश्ता।
1: अब एक और छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक पर्यटक बता रहा है कि वो होक्काइडो में क्या क्या करना चाहता है।
4: होक्काइडो दे नानी ओ शिमास का? हाइकिंग ओ शितारी ओनसेन नी हाइत्तारी शिताई देस।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
1: पहले एक आदमी ने पूछा,
4: होक्काइडो दे नानी ओ शिमास का?
0: होक्काइडो में क्या करने वाले हैं?
1: यहाँ
3: होक्काइडो दे
1: का अर्थ है होक्काइडो में और
3: नानी ओ शिमास
1: का अर्थ है क्या करने वाले हैं। जवाब में दूसरे आदमी ने कहा,
4: हाइकिंग ओ शितारी ओनसेन नी हाइत्तारी शिताई देस।
0: हाइकिंग करना चाहता हूँ और ओनसेन में नहाना चाहता हूँ।
3: हाइकिंग वो शितारी
1: है।
3: हाइकिंग वो सुरु
1: यानी हाइकिंग करना का तारी रूप और
3: ओनसेन नी हाइतारी
1: है।
3: ओनसेन नी हाइरु
1: यानी ओनसेन में नहाने का तारी रूप।
0: इस वाक्य में दूसरे आदमी ने अपनी इच्छा बताई, इसलिए उसने वाक्य के अंत में लगाया
3: शिताई देस
0: यानी करना चाहता हूँ। इससे आप समझ सकते हैं कि तारी का इस्तेमाल पुरानी बात बताने के लिए भी किया जा सकता है और भविष्य की बात या इच्छा बताने के लिए भी।
1: तो वाक्य सुनिए और साथ साथ दोहरा कर अभ्यास कर लीजिए।
3: हाइकिंग वो शितारी ओनसेन नी हाइतारी शिताई देस। हाइकिंग वो शितारी ओनसेन नी हाइतारी शिताई देस।
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप ओकिनावा घूमने गए थे और किसी ने आपसे पूछा कि आपने वहां पर क्या किया। आप उन्हें बताना चाहते हैं कि खरीदारी की और समुद्र में तैराकी की।
1: खरीदारी करना को जापानी भाषा में कहते हैं
3: काइमोनो सुरु। काइमोनो सुरु
1: क्रिया सुरु यानी करना का तारी रूप है
3: शितारी।
1: और समुद्र में तैरना को जापानी भाषा में कहेंगे
3: उमी दे ओयोग। उमी दे ओयोग
1: क्रिया तैरना का तारी रूप है
3: ओयोइदारी। ओयोइदारी
1: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
4: काइमोनो ओ शितारी उमी दे ओयोइदारी शिमाशिता।
0: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो ताम की पंक्ति है। आप भी इसे याद कर लीजिए।
2: ओइसो।
3: ओइसो
0: का अर्थ है स्वादिष्ट लग रहा है। अगर आपने कोई चीज अभी तक नहीं खाई है और वो दिखने में स्वादिष्ट लग रही है तो आप कहेंगे
3: ओइसो।
0: कोई चीज खाकर अगर स्वादिष्ट लगे तो कहेंगे
3: ओइशी।
1: अब आप भी उच्चारण का अभ्यास कर लीजिए।
3: ओइसो।
0: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
2: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
2: はい。ユウキさんに会いたいです。
5: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: अब हम लेकर आए हैं अंश काइतो के साथ खाना पीना। आज के पाठ में ताम और मिया ने मेरोन पाफे खाया, इसलिए आज हम बता रहे हैं जापान की मिठाइयों और नमकीन के बारे में।
0: जापान में मिठाइयों और नमकीन में बहुत विविधता देखने को मिलती है। इनमें जापान की पारंपरिक मिठाइयां और नमकीन के अलावा पश्चिमी शैली की मिठाइयां और नमकीन भी शामिल हैं।
1: लेकिन पश्चिमी शैली की बहुत सारी मिठाइयाँ भी यहाँ जापान के रंग में ढल चुकी हैं। जैसे जापान के शॉर्टकेक का उदाहरण लेते हैं। ये स्ट्रॉबेरी शॉर्टकेक जैसा दिखता है, लेकिन इसमें स्पंज केक का इस्तेमाल होता है।
0: कुछ आम जापानी मिठाइयाँ और नमकीन हैं चावल की टिक्कियाँ, चावल के पापड़ और लाल मूंग के मीठे पेस्ट भरे बन। इनके अलावा मौसमी विशिष्टताएं भी हैं, जैसे गर्मियों में तरह तरह की बर्फ की चुस्कियां और सर्दियों में लाल मूंग का मीठा सूप।
1: जापान की मिठाइयां सुंदर दिखने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। वसंत में चेरी के फूलों और पत्तों वाली चावल की टिक्कियां और गर्मियों में सितारों जड़े आसमान या साफ नदी जैसी छवियों पर आधारित ताजगी भरी मिठाइयां बहुत आकर्षक लगती हैं।
0: जापान में आप भी यहाँ की मिठाइयों की खूबसूरती और स्वाद का आनंद जरूर लीजिएगा।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में जापान की पॉप संस्कृति का जानकार माइक हारुसान हाउस आएगा। तब तक के लिए

0: ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। अब आज की बाकी खबरें समाप्त फरमाइए। आफात से निमटने के जिम्मेदार नेपाली हुकूमत के एक ओहदेदार का कहना है कि हुक्काम गुज़िश्ता माह आने वाले हलाकत खेज सैलाबी रैले और मिट्टी के तोदों से मुतासरा इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव धर्म राज अप्रेती ने जुमेरात को नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में NHK से बात की। उन्होंने कहा कि हुकूमत दरिया के किनारे और आफत से मुतासरा दीगर इलाकों को आबादी के लिए गैर महफूज करार देने का इरादा रखती है। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत तवील मुद्दती आबादकारी के लिए महफूज मकामात का इंतखाब कर रही है और स्कूलों, अस्पतालों और दीगर सहूलियात की मुंतकिली के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए मकामात पर मुंतकिली मुमकिन तौर पर अगले 2 हफ्तों में शुरू हो जाएगी और हुकाम आर्जी रिहाइश की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत जापान से तआवुन तलब करने का इरादा रखती है। उन्होंने ये भी कहा कि पन बिजली घरों की सुरंगों में फंसे हुए लोगों की तलाश के लिए ऑपरेशन मुमकिन तौर पर 1 से 2 हफ्तों में खत्म हो सकता है। शिमाली कोरिया की तरफ से अगवा किए गए जापानी शहरियों के खानदान के अरकान ने तमाम बाकी मानदा अगवा शुदगान को जल्द अज जल्द घर वापस लाने के लिए मदद की अपील करने की खातिर वॉशिंगटन का दौरा किया है। योकोता ताकुया अगवा शुदगान के खानदानों के एक ग्रुप के सरबराह हैं। उनकी बड़ी बहन मेगुमी को उस वक्त अगवा किया गया था जब वो जूनियर हाई स्कूल के पहले साल की तालिबा थी। ईजुका को इचिरो की वालिदा तागुची जायको को उस वक्त उठा लिया गया था जब वो सिर्फ 1 साल के थे। योकोता और ईजुका ने अमरीकी दारुल हुकूमत में सरकारी हुक्काम और कानून साजों से मुलाकात के बाद बुध को एक न्यूज कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगवाशुदगान के रिश्तेदार बूढ़े हो रहे हैं और ये कि उन्होंने इस मामले के सिलसिले में अमरीकी हुकूमत से तफहीम और तआवुन की दरख्वास्त की थी। योकोता ने कहा कि उन्होंने लोगों को अपनी वालिदा साकिए और अपनी अगवाशुदा बहन की तस्वीर दिखाई। साकिए अब 90 साल की हैं। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि जज्बे के साथ पहुंचाए गए और सुनने वालों की आंखों में देखकर बोले गए अल्फाज अमरीकी मुआशरे में गूंजेंगे। ईजुका ने तश्वीश जाहिर की कि अगर रिश्तेदारों ने आवाज उठाना जारी न रखा तो ये मामला भुलाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वो जब तक जिंदा हैं अपीलें करते रहना चाहते हैं। जापान के मयारी तवील मुद्दती हुकूमती बॉन्ड का मुनाफा तकरीबन 30 सालों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। जुमे को एक मरहले पर 10 साला बॉन्ड का मुनाफा 3.115% तक पहुंच गया। जापान बॉन्ड ट्रेडिंग का कहना है कि ये शरह अगस्त 1996 के बाद सबसे ज्यादा है। खाम तेल की बुलंद कीमतों की वजह से अफरातज़र के खदशात ने अमरीकी और यूरोपी तवील मुद्दती शरह सूद को भी बढ़ा दिया है। इसके बायस जापानी हुकूमती बॉन्डों की फरोख्त में इजाफा हुआ और मुनाफे की शरह बुलंद रही।
1: और सामेन, आखिर में आज की अहम खबर का खुलासा पेश है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग ने वाशिंगटन में अपनी सरबराही मुलाकात समेट ली है। जुमेरात को होने वाली मुलाकात मई में ट्रंप के बीजिंग के दौरे के बाद इस साल उनकी दूसरी रूबरू बातचीत थी। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई।